बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जड़ान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड।

रहने हिमालबाट खोल झर्यो बेसी सलालाला नदेखे माया के हो कसो देखे माया झलमल हो तोरी कतेला ठोरी करेला तिम्रो हाम्रो साली।

0: 91.4 MHz मा तपाईहरु हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरबाट अनुभव प्राप्त वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखरेल अब बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराही दाङमा।
2: डाक्टर अभ्यास पोखरेलद्वारा दिइने सेवाहरू
3: मेडिकल आईसीयू लगायत सुगर प्रेसर थाइराइडको चेकजाँच तथा उपचार सेवा,
4: छाती मुटु दम क्षयरोग सम्बन्धी बिरामीको चेकजाँच तथा उपचार,
3: मृगौला र कलेजो सम्बन्धी दीर्घकालीन रोगहरूको चेकजाँच तथा उपचार,
4: डेंगु मलेरिया निमोनिया टाइफाइड साथै विभिन्न रोगहरूको चेकजाँच तथा उपचार सेवा,
3: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू
4: वरिष्ठ स्थिति तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
5: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
3: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
5: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
3: वरिष्ठ हात जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादवद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
5: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
3: साथै इन्डोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सिस्टोस्कोपी इको कल्पोस्कोपी सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
6: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-8563-218।
7: दशकौंदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरी सेवा दिँदै आइरहेको यस शिव मेडिकलमा निम्न विशेषज्ञ सेवाहरू सुचारू भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
8: नियमित विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाहरू मेडिसिन वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर जित नारायण यादव, प्रसूति तथा स्त्री रोग वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर रमेश यादव,
9: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रवि आचार्य,
10: हारजोडनी नसारोग तथा स्पोर्ट्स मेडिसिन रोग विशेषज्ञ डाक्टर अजय रेग्मी,
11: रेडियो एक्सरे कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर नारायण बोहरा र कन्सल्टेन्ट रेडियोलोजिस्ट डाक्टर दृष्टि लामिछानेद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान भइरहेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ।
8: साथै ईसीजी पीएफटी मुटुको भिडियो एक्सरे इको इन्डोस्कोपी सेवा प्रयोगशाला डिजिटल एक्सरे सेवाका साथै अपरेशन सम्बन्धी सेवा तथा सल्लाहको लागि सम्झनुहोस्। सम्पर्क शिव मेडिकल हल हस्पिटल रोड घोराईदाङ, फोन नम्बर 082-560-734 र 082-560-138।
12: सूचना न्यू मनकामना डेन्टल क्लिनिक सरेर सडक विभाग ओह्रालोमा मेन रोड स्थित बुद्ध हस्पिटल नेर नयाँ व्यवस्था

को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफरमा तीन महिना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट रु 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जडान को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल मा आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायनेट अब सबै कनेक्टेड।

राम राम सन्जेक पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। भोटेकोशी ओ त्रिशुली लद्देमा गैलक भदौ दशमा अहिलेक बाढीसे रसुवा नुवाकोट धार्दिङ लगायतका जिल्लामा झण्डै 1.5 लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुलक सरकारका प्रारम्भिक आकलन बा। विनाशकारी बाढीसे 1.5 लाख नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुलक र शुरूआती आकलन रनक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय जना राखल। सिंहदरमारमा आज बेसलक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रवृत्ति समितिका बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव डाक्टर विकास देवकोटासे विभिन्न संयन्त्र मार्फत संकलित तथ्याङ्कका आधारमा प्रभावित नागरिकको प्रारम्भिक संख्या आकलन गर्लक जानकारी दिएर उहाँसे प्रभावित क्षेत्रसे उद्धार गरिकन होल्डिङ सेन्टरमा धर्गिलक 25 जनामा झाडा पखाला हुइलक भेटगिलक फे बटुवा रख्ल। उहाँको अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू समस्या अखिसम्म देखा परल्ने हो। सचिव देवकोटासे भौगोलिक अवस्था ओ तापक्रम अनुसार भवन निर्माणका अवधारणा अगाडि बढ़ाइपर्ना ओ मन्त्रालयसे ऊ सम्बन्धी योजना तयारी गर्तिरलक उल्लेख गरिरहल। पुनर्स्थापना ओ पुननिर्माणका लागि क्लाइमेट रेजिलेसन्स स्ट्रक्चर सहितको योजना निर्माण गर्तिरलक उहाँका काही बाटिन। बर्दियामा किशोरीमा रक्त अल्पताको समस्या भर्ती गेलक पागिल्बा। स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियासी कर्लक रक्त परीक्षणमा 82% किशोरीमा रक्त अल्पता देखगिलक हो। आगक आर्थिक वर्षमा 80% रह। स्वास्थ्य कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2082-83 जिल्लाका 8 पालिकामा 8 विद्यालयमा अध्ययनरत 1968 किशोरीको रक्त परीक्षण गरिगिल रह। परीक्षण गरिगिलक मध्ये 1617 जनामा रक्त अल्पता देखगिलक स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क बा। रक्त अल्पता देखिलक किशोरी मध्ये 820 जनामा सामान्य, 765 जनामा मध्यम ओ 32 जनामा कड़ा रक्त अल्पता देखगिल्बा। परीक्षण गरिगिलक 351 किशोरीमा भई रक्त अल्पता नि देखगिलक स्वास्थ्य कार्यालय जना राखल। कड़ा रक्त अल्पता देखगिलक किशोरीको नक्ला औषधि उपलब्ध गराकन थप परीक्षण तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पठाइगिल्बा। सामान्य ओ मध्यम रक्त अल्पता देखगिलक किशोरी हन आइरन चक्की उपलब्ध गरिलक। उसँग पोसिलो तथा सन्तुलित खाना सुझाव खाइकला सुझाव देगिलक स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका सूचना अधिकारी पद्मकुमारी श्रेष्ठ बतुवा रखले। स्वास्थ्य कार्यालयले आगक आर्थिक वर्षमा 2081-82 जिल्लाका 8 पालिकाका 16 विद्यालयका 3337 किशोरीको रक्त परीक्षण गरिगिल रह। ऊ अवसरमा 2693 अर्थात करिब 80% किशोरीमा रक्त अल्पता देखगिल रह। दाङको तरिगाउँ विमानस्थलमा 1.5 महिना पाछ जहाज अवतरण गरिराखल। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वरिष्ठ अधिकारी प्रदीप भूषालका अनुसार बिहिबार आज 1.5 महिना पाछ विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्लक हो। नेपाल एयरलाइन्सका 19 सिटी जहाजमा आज काठमाडौँ से 8 जना ओ दाङ से 4 जना यात्रु से सेवालिएर रह। मौसमको कारण अनियमित हुइलका दाङ काठमाडौँ हवाई सेवा भरि नियमित हुन वरिष्ठ अधिकृत भूषालका काही बाटिन। उहाँका अनुसार आव हप्तामा आइतबार मंगलबार बिहिबार ओ शुक्रबार कैकन 4 दिन सेवा प्रदान गर्जिने बा। हाल हवाई भाड़ा 12,000 बराबर बा। हवाई सेवा विमानकन 9 बजे से 11 बजे के बीच में उपलब्ध हुना भूषाल बतुवा रख्ल। तरीगांव में हाल 750 मीटर केल धावन मार्ग बा जहां 19 सीटे जहाज केल 22 सेक्ठा कम क्षमता का जहाज बेचना व उफे अनियमित हुना हुई से यी क्षेत्र का यात्रु नेपालगंज वा भैरवा जाईपर्ना बाध्यता बा। स्थलमा भारी जहाज बैस्नाकैकन धावन मार्ग विस्तारका लागि घरिघरि आवाज उठिदै अहिलेसे फे यहीसे सार्थकता पाइस्याकल्नी हो। विक्रम सम्वत 2011 स्थापना हुलक विमानस्थल विस्तार हुइस्याकल्नी हो। चालू आर्थिक वर्षमा विमानस्थल स्तरोन्नति 25 करोड़ बजेट विनियोजन हो रहल। ओ भोटेकोशी बाढ़ीमा प्रक्रम मृत्यु हुइलक मध्ये हालसम्म 1385 जनाको शव फेला परल बा। उसका 5130 जना आही सम्पर्कविहीनबाट। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुसार शुक्रबार बिहान 11 बजेसम्म 54364 नवलपरासी, पूर्वमा 228 नवलपरासी, पश्चिममा 222, नुवाकोटमा 169 ओ रसुवामा 185 जनाको शव फेला पर्लक हो। ज्याकर मध्ये हालसम्म 104 थोक शवको शनाखत हो रह। उसको बाढ़ीसे हालसम्म 13676 जनाको उद्धार गरिगिल बा। उसको उद्धार गरिगिलक 37
ठो होल्डिङ सेन्टरमा धर्गिल बा होल्डिङ सेन्टरमा नुवाकोटमा 2615 र सुवामा 775 ओ धादिङमा 295 जना रहलबाट बाढ़ी प्रभावित क्षेत्रमा बेपत्ताका खोजी तथा उद्धारका लागि 21,022 जना सुरक्षाकर्मी परिचालन करगिल बा ज्याकरमा नेपाली सेना 8,844 नेपाल प्रहरी 7,975 ओ सशस्त्र प्रहरी बल 4,203 संलग्नबाट आजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखस्ता खबर मसे समाचार कक्षको सक्कु संग्रहसँग मैं शालिक राम चौधरी विदा हिटु रिजी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया जरान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट विटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस अडगुरी

0: 94 मेगाहर्ज मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक ते मात्र रु 50 मा।
2: गुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराही दान फोन नम्बर 0825162110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोर्निङ सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
9: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली सडक विभाग ओह्रालो घोराई दाङ फोन नम्बर 0825362118।